0: मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा कदो
1: आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर हर कथा कदो
0: आवो संत मिलो मेरे पाई मिल हर

बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरी बहुरंगी सब तेरे निया। तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत।

एक ताल दो ताल हूं तीन ताल श्रवण कर लो नहीं जी दो ताल हो गया हूं तीन ताल जो कब कीनो सो भल मान्यो इस मत साधु ते पाई सब मेरा रे राम योग

एक ताल, दो ताल, तीन ताल, चार ताल और चार ही राग, माल कौश, चंद्र कौश, सूर्य कौश, जोग कौश, चार ही पंक्तियां बिसर गई सब तात्पराई। जब ते सात संग मोह पाई, ना को बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमको बने आई। जो कब की नो सो भल मान्यो, इस मत साधु ते पाई, सब में रव रहा प्रभु कह, देख देख नानक की साई। आप जी ने श्रवण किया है तराना, साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमा रहे ने यह तराना जेड़ा है अनकौमां जिहड़ियां ने गैर सिखां नूं चुका के रख देने वाली बात है। मैं इत्थे बहुत वड्डे वड्डे गंधर्व गायक इकट्ठे हुए सी, कहण लगे जी सिखां नूं तां राग गाउणा ही नहीं आउंदा, ऐसा साढ़े सामने उन्हें कहा। कहिंदे असां वी वार तां ला लैंदे आ पर राग गाउणा नहीं आउंदा। मैं कहा जी राग साढ़े सतगुरां ने गाए आ। कहिंदे गाए तां तुसीं सुनाओ। यह तराना सुनाया और सारे हाथ जोड़ के कहिंदे जी यह सानू लिखा दिओ तराना, असीं तां इस तरह की बंदिश कदी सुनी नहीं। मैं कहा जी यह फिर साहब गुरु गोबिंद सिंह की दात है, उन्होंने मत्था टेको तो उन्होंने को ही सरवण करो, उन्होंने को ही यह दात प्राप्त करो। सारे ने फिर बड़े अदब नाल साहब गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नमस्कार की। इतने दुर्गाणा मंदिर की बात है, सारे आखो धन गुरु गोबिंद सिंह साहब मान। तो तराना सरवण करना साहब सब सच्चे पातशाह आप गाते रहे और आप इन्होंने इस तरह के 20 तराने श्री सरवलो प्रकाश ग्रंथ के अंदर विद्यमान ने, कभी आप दर्शन करना।

चार पंक्तियां हैं। भागिरदी धर्म दृष्टांत आगिरदी देम दिरना, भागिरदी धर्म दृष्टांत आगिरदी देम दिरना, भागिरदी वृक्ष बंता आगिरदी तोम तोम तोम दिरना।

नक्षत्र वीणा का एक स्वर है दीन, बिरना जो है एक सितार का स्वर है, बिरना बिरना सितार में वजदा है, और दीन जड़ा है विचित्र वीणा में वजदा है, ये साजा के दर्शन कराए ने।

रोग पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात दुदाई दया खेले गर्मी आपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम जय मशक्कत नानक

तेरा कट कट के अंतर की जान तुपरा मेरा अंतर जामी जान कट कट के अंतर की जान तुपाले।

स्वामी सब विद जाने प्रभ मेरा अंतर जामी जान हर अंतर जामी सब विद जाने और किस पे आप सुनाए

सरदा मन की पूरे प्रभु मेरा अंतर जमी जान। मेरा प्रभु, मेरा अकाल पुरख, मेरा वाहिगुरु निरंकार सब कुछ जानता है। जीव दे मन अंदर की मनुख की चाहता है, मनुख की इच्छा की ये परमात्मा जानता है। जिदे अगे आके असी शीस नवाने ना, वो जानता है कि मेरे गुरसिख की मन की भावना की चाहता की। प्रभु मेरा अंतर जामी जान, मेरा प्रभु जानता है अंदर की बुझ लैंदा है, वेख लैंदा है कि अज गुरसिख कैसी मन अंदर भावना लैके आया है, अज की मंग है, अज इसनू की चाहिए है, जो भी चाहिए है वह सतगुरु देंदा है। क्यों? अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे प्रभ मेरा अंतर जामी जान। जिदे मन अंदर कोई श्रद्धा ही ना हो, श्रद्धा पूर्ण किवें हो सकती? जे असी कोई श्रद्धा लैके आवांगे, कोई भावनी लैके आवांगे, सतगुरु जरूर पूरी करनगे, क्योंकि प्रभ मेरा अंतर जामी जान। वो जानता है कि अज भावनी मन अंदर की है। प्रभ मेरा अंतर जामी जान, अंतर जामी पुरख स्वामी अन बोलत ही जानो हाल। कुछ बोलो भी ना, कुछ कवो भी ना, ती परमात्मा सुन लैंदा, परमात्मा जान लैंदा है। अन बोलत ही जानो हाल, सब कुछ जानता है, वो वेख रहे हैं, सुन रहे हैं कि अज कैसी मंग आई। परमात्मा से ख्याल ही रखता है कि सेवक मंग करे तो मैं पूरी करा, कदों जीव मंगे तो मैं उसनु देवा। असी आने ही मंगने वास्ते इस डर से डिगने ही ता वा कि सतगुरु अज आ वस्तु चाहिए दे दे। सतगुरु एक खिण भी नहीं लाता, सेवक चोली विच दात पा देंदा। किन्ना दी जिन्हां यकीन है, भरोसा है, अकीदा है, असी भरोसा करी ਇਹਦੇ ਤੇ।

सोई कसम हमारा तब मेरा अंतर जामी जान। मेरा खसम कैसा है, मेरा मालिक कैसा है, अंतर्जामी करने हारा सब कुछ करन कराने वाला उपापी। अंतर्जामी करने हारा सोई खसम हमारा ते जिदा एहो जिहा खसम होवे जिदा सब कुछ कर करा रहा होवे ते ओदी कोई मंग रह जांदी, कोई इच्छा रह जांदी, कोई भावना रह जांदी नहीं, क्योंकि ओदा मालिक सब कुछ जानता है, सब कुछ आप करन करावन हार है ते उहनूं ते कमी हो ही नहीं सकती। किनू अंत

भूमि काची दे मानुख अबगामी काची दे मानुख अबमानी प्रभु मेरा अंतर जामी जान ओ प्रभु सब कुछ जान साहब आखदे ने जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर जे तेरे मन अंदर कोई भावनी है ना ते आके गुरु अग्गी अरदास कर ओ गुरु भावनी पूरी कर देवे खाली चोली नहीं भेजेगा भर देवेगा क्योंकि ये दरबार ही ऐसा है इस दरबार अंदरों कोई खाली चोली नहीं गए जो खाली चोली आए ने पर के गए ने जो रोंदे आए ने हसदे गए ने ये तो दरबार ही ऐसा है कौन खाली गए आप छोकर त्यास पक हो जरा जे गुरु तेग बहादुर साहब दे दरबार अंदर शीश दी मांग हुई ते शीश पेटा दे दिता गया है ऐसा दरबार कोई सारा सरबंस कुर्बान कर दिता जावे चोली विच दान पा दिता जावे उस दाते दी दरबार च आए जे असी खाली चोली चले जाइए कदी हो नहीं सकदा आओ निश्चय यकीन ते भरोसे दी नणमंग कर लई ते प्रभु कड़ा है प्रभु मेरा अंत जामी जान तू करता सब किछ जानदा गल भी करनी आउंदी होनी चाहिदी दान भी मंगना आउंदा होना चाहिए दान मिल जांदा आ के कही तू करता सब किछ जानदा तू तो जानना है परमात्मा मेनू की चाहिए मेनू की लोड़ीदा मेरे मन अंदर इच्छा की है मेरी भावनी की है तू परमात्मा जानना है तेनू दसण की कोई जरूरत नहीं तू करता सब किछ जानदा जो जिया अंदर वरते प्रभ मेरा अंतर जामी जान जो साडे मन अंदर है तू जानना है ते हे अकाल पुरख कृपा कर साडे मन दी इच्छावां भावनियां पूरियां कर दे ऐसी अरदास असी सारे करिए ते पातशाह साडे मन अंदर इच्छा है कि तेरा नाम साडी चोली विच पवे सब तो वड्डा नाम ही है ते जिन्हें नाम अपनी चोली विच पवा ले है रिद सिद्ध नाम है की दस रिद्धियां सिद्धियां ते नाम दियां दासियां ने असी नाम दी ही जाचना करिए जो नाम मंग लांगे सब कुछ मिल जाएगा क्योंकि इधर आके सब कुछ असी मंगना है ते जो मंगांगे वो मिल जाएगा जो मंगा है सो लेवे प्रभ अपने संतां दे ले ओ प्रभु अंतर जामी जानदा है अपने सेवकां नू सिखां नू संतां नू सब कुछ देंदा है जिहड़ा आके की देती भरोसे दे नाल इस दर तों मंग लैंदा है आओ सारे मिलके मंगिए।

अकाल पुरख से यदि अरदास करें मंगदे पियन शुभ कर्म अपने वास्ते में आप तो निरंकारी दोस्त आप तो निरंकार का ही स्वरूप पर ये दास अकाल पुरख को किस वास्ते मंग रहे हैं साढ़े वास्ते मंग रहे साढ़े वास्ते ये महान वड्डी दास शुभ कर्मा देह शिवावर मुहे है शुभ कर्मन से कम हूं न करो शुभ कर्मा शुभ कर्म ही सबको बची है बाबा जी बची करते सब परमार्थ तो सदा ही पवित्र है निर्मल परमार्थ कदा ही पवित्र और साडा विहार ये पवित्र होना चाहिए विहार निर्मल होना चाहिए परमार्थ का सदा ही निर्मल जिसका विहार पवित्र है विहार सच्चा से सच्चा हो गया उसका जीवन विहार हो रहा है दिखावा हो रहा है वो फिर असली जीवन में बनावटी जीवन तो शुभ कर्मा की विशेषता है सबसे ज्यादा शुभ कर्मा नाली दुनिया में कामयाबी दुनिया भी सत्कार कर दी है जिसे को शुभ कर्म तो फल भी दस कलयुग जीवन के वास्ते अकाल पुरख दे के अरदास कर रहे हैं देह शिवावर मोहे के है ये भी कहते हैं कि कलगी दस सतगुरु जी ने शिवजी महाराज की अरदास की सबने शिव नाम जो है वो अकाल जिन्हों लोग शिवजी कहते हैं असली उसका नाम महादेव है सतगुरु जी ने आप फरमाया है महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का कीनत न भेद महादेव नू लोग शिव कहते वो इस वास्ते जेड़ा सिमरन करने वाला होवे रब की बंदगी करने वाला लोग उन्हें कहें भई ये तो रब रूप ही क्यों रब नाल जुड़े इसे तरह महादेव नू शिव जी किया जाता है पर असल में शिव नाम अकाल पुरख उस अकाल पुरख दे के कलगी धर दशमेश पिता जी ने ये अरदास की थी ये वर मंगे दे शिवा वर मुले के है कर्मन से कम शुभ कर्मा की दात साढ़े वास तो जिन्होंने शुभ कर्मा की दात प्राप्त कर ली उन्होंने गुरु दिया मेहर उन्होंने दुनिया जय जयकार अज मेरे कलगी दर सती पातशाह जी साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जिन्हों फतेह हासिल हुई धर्म की तज खड़ी कर दी आखो श्री धर्म का बोल सदा वास्ते चढ़दियां कलां कर फतेह प्राप्त नाशवंत पदार्थां नाल प्यार नहीं किया अमर वस्तु जो सी धर्म उसनों अपना
ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧਰਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਹੈ ਭਾਈ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲ ਧਰਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਮਝਿਆ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨ ਇਸਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨ ਸੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਚੰਗੀ ਸੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਅਜੂਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤੀਆਂ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜੇ ਆਓ ਜੋ ਦਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਈ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਟ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ

ई पावन पवित्र शब्द साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दा उच्चारण कीता। जिस शब्द अंदर सतगुरु गुरु नानक पातशाह सानू कलयुग जीवां नू उपदेश देंदे होए एक गल समझांदे, असी चंगे क्यों नहीं। कदी किसे मनुख ने अपने आप नू भी माड़ा आखिया, ओ ते कहिंदा है मेरे वर्गा चंगा है ही कोई नहीं, जिन्ना मैं सियाणा, जिन्ना मैं सुगड़, जिन्ना मैं गुणवान, जिन्ना मैं ज्ञानी, मेरे वर्गा कोई संसार विच नहीं। पर साहिब कहिंदे ने भाई चंगा किसे चंगियाई नाल हुंदा है, शुभ गुणा दे नाल हुंदा है। अपने आप चंगे बन बहना उसनू चंगा नहीं आखदे। इधर पट बाणी विच कहिंदे ने चंगे किवें हो सकने आ जे साडे अंदर मालक दी समझ मुताबक गुण होण। ते जे हे परमात्मा तेरे शुभ गुण साडे अंदर एक भी नहीं ते असीं अपने आप नूं चंगे किवें खवा सकने। पट तां ऐसा कहिंदे ने।

मैं ते अवगुणा दा भरिया होया, मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है, क्योंकि चंगा ते मैं गुण नाल होना है ना। पर जे मेरे अंदर एक भी गुण ना होवे ते मैं चंगा किवें हो सकदा।

कंचन नारी में जियो नौबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर वो गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

हे मेरे राम ए साडे नीवे करम मंदे पाग मैड़े करम तू सानू बख्श लै मेरे राम ए नीच करम हर मेरे इना कुकर्मा विच पै के असी अवगण ते कठे कर रहे ने साडे अंदर गुण कोई भी नहीं पैदा हो। मैं कई बार बेनती करिया करदा आपां जदों गुरु दरबार आईए ना उदों कोशिश करिया करिए कि हाथ बन के बेनती करिया करिए हे परमात्मा तू कर कृपा मैं थे एक अवगण छड़ जावां ते इथों एक गुण लै जावां क्योंकि एक एक अवगुण छड़ी जावांगे एक एक गुण ग्रहण करी जावांगे एक दिन ऐसा आ जाएगा कि अवगुणा दा नाश हो जाएगा गुणा दी प्रवृत्ति हो जाएगी। पर जे आपां कोशिश करिए ते तां ही ना हुण तुसी देख लो बच्चे नूं असी नर्सरी च बिठाने आ पहली क्लास विच उस तो बाद अगे वो एक दो तीन करदा करदा किथे तक पहुंच जांदा है। बस इंज समझ लो कि अज असी नर्सरी च आए हां ते गुरु नानक दे स्कूल विच पढ़ना है ते जिस वेले गुरु नानक पढ़ा रहे हुण बैठे उदो पढ़दियां कोशिश करिया करिए मालिक एक सबक रोज दे दे एक सबक रोज चाहिदा है। जे एक एक सबक करदे हां असी उस गुणा नूं ग्रहण करना शुरू कर दिता एक दिन गुण ही रहणगे अवगुण नाश हो जाणगे क्योंकि गुरु नानक दा दर ऐसा है नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ए ते निर्गुणा नूं गुणवान बना दिंदे हन ते इस दर ते आके भी असी अवगण नहीं छड्डदे ध्यान देना अवगण नहीं छड्डदे बल्कि असी आउणा छड्ड दिंदे। कहिंदे ने एक व्यक्ति एक तीर्थ ते गया ते तीर्थ ते बैठिया मुखी पंडित ने आखिया हे भाई तेरे इत्थे बुजुर्ग भी आया करदे सन तू भी आए ओ जदों भी आउंदे सन कोई ना कोई अवगण छड़ जांदे सन कोई ना कोई चीज छड़ जांदे सन प्रण करके जाया करदे सन ते तू भी कुछ प्रण कर जा तू भी कुछ त्याग दे तू भी कुछ छड़ दे। कहिंदा तुसी हुक्म करो की छड्डा कहिंदे ने हुण पंडित जी ने कुछ वस्तुआं कुछ चीजां दे नां लै की छड़ सकता है। जिस वेले आज उन्हां ने वह अवगणा का ना लिया कि इन्हां विचों कुछ भी छड़ दे ए व्यक्ति ए प्राणी कहिंदा कहिंदा पंडित जी जिहड़ियां गल्लां तुसी छड़न लई कह रहे हो मैं ए ते नहीं छड़ सकदा हां ए हो सकदा है मैं इत्थे आउणा ही छड्डिया मैं दोबारा नहीं आवांगा। ऐसे भी व्यक्ति हन वह अवगण नहीं त्यागदे आउणा छड़ दिंदे ने कई कई बार औखे हो जाते ने कि सच की गल सुनीए क्यों कौन हुंदा कोई सानू सच कहण वाला आपां जिवें चल रहे हां ठीक है नहीं भाई इस गुरु दे दर ते आए हां आपां कोशिश करिए एक एक अवगुण त्यागण दी ते गुरु सानू गुण देवेगा कि ऐसा नहीं ना करांगे। धन गुरु नानक पातशाह कहिंदे ने हर बिसरत तेरे गुण गलिया गल जाणगे इसलिए साहब कहिंदे ने मेरे राम ए नीच कर्म हर मेरे ते गुणवंता मैं ते अवगुण हारा तेरे दर ते आया हे मेरे मालिक तू गुणवान है तेरे अंदर गुण हन ते तू साडे ते कर कृपा।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल ढंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई ढंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सतसंग तो ध्यान देना हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप।

0: हम पापी तुम पाप खंडन।
1: हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करन वाले हां, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले, किवें चंगे हो? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर दे सामने नाल चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा है। हम ऐसे तू ऐसा, आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे, जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुर ख्याल

0: हम अवगुण तुम उपकारी।
1: मैं अवगुण हारा ते आप उपकारी हो।
0: मैं अवगुण करी जाना आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे।
1: ख्याल करना परमात्मा अवगुण बख्शदे हन।
0: एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी,
1: कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है।

0: ना खंडस अवगुण मेरा।
1: हे रमैया मैं तेरा बालक हां, काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा दी याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे कोल अवगुण बख्शा लैने। इसलिए भाई आओ आपां उस मालक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे

गोविंद हम ऐसे अपराधी। हे गोविंद असी कहो जाए अपराधी हैं, असी कहो जाए हैं, आप कहो जाए हो। जेता समुंद

गोविंद हम ऐसे अपराधी, ऐसे अपराधी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने कि हे मेरे मालिक असी किहो जिहे अपराधी आ, साडे अंदर किन्ने कु औगण ने। भाई साहब जी ने इस पौड़ी अंदर 22 औगणा का जिक्र किया है, कहते ने 22 औगण सब तो वड्डे मेरे विच ने। साध सिंह ध्यान करना,

नाम तो बिना भाई तेरा किवें छुटकारा हो सकदा है। ते नाम मिलदा कित्थों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तैनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नूं नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस लई हजूर बख्शिश करदे हन कि ए गुरु दी शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदियां ने घड़े नूं, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकदा, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसी तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलनगे।

परम सत्कारयोग सत्संग जीओ, आओ हुण आपां भाई जसवीर सिंह जी पौंटा साहिब वाले पासिओं शब्द कीर्तन सरवण करिए। शब्द भगत कबीर साहब जी का उच्चारण किया होया जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। मन ना डिगे तन काहे को डराए, मन नूं डराण दी की लोड़ है। मन ना डिगे तन काहे को डराए, चरण कमल चित

बेनती करन आए ने के साडी रखिया करो। फिर सच्चे पातशाह की हो सकता, वचन कीता बेटा कोई पूर्ण महापुरुष अपना बलिदान देवे ता इन्हां दे धर्म दी रखिया हो सकदी। ते अगों बेनती कीती हथ बन के

कि ए तिलक मैं खूंजन नहीं देंगा, मैं जुल्म नहीं होन देंगा, किसे दा धर्म खोन दा किसे नू कोई हक नहीं है। ते ओ हाथ नू रोकन वास्ते भावे अपना सीस अपना सिर कटवाना पिया, दिल्ली दे चांदनी चौंक विच सिर ता कटवा दिता, पर उस दा हाथ फड़िया सी जेड़ा, ओ मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पूंज सकिया। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

हमारी जेबा एक रंग हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जब ईरान हर तुम बड़ अगम अथाह।

अंतरूप मंगल सद जाके धर्म थोप सुनिए करता के राज में राज योग में जोगी तब में तो तीसरे दस्त में भोगी त्याय त्याय भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने।